0: ओ मेरो फुलीवाली, अब के छ त चित्र?
1: के विचार? को फुलीवाली? म त बहिनी
0: बहिनी त चाली, तिमी नै त अनि मेरो फुलीवाली।

पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले साँझ 7 बज्यो।